0: तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा
1: इट्स कॉल्ड चौपैसा
0: कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन शुभ राता
1: इट इज द मोस्ट पावरफुल प्रेयर ऑफ विक्ट्री द हेवंस वर इन ऑ गुरुजी गेव ह्यूमैनिटी दिस ग्रेट विक्ट्री कॉल
0: दुख दर्द पो निकट नितिन नर के रह हो जो या की एक बार जो पी कोक है
1: The heavens erupted in cheers at this incredible gift to us. The seal of victory had now been given.